भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आज जिन कलाकारों के गाए भक्ति गीत हमने आपको सुनवाए हुए थे, पुरुषोत्तम दास जलोटा, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र प्रसन्ना से बांसुरी वादन पर राग यमन। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म हरि दर्शन से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। गीत लिखा है कवि प्रदीप ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज से। संगीत निर्देशन रवि ने किया था। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म 9-2-11 से। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एसडी बर्मन।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म उपकार से मन्ना डे की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मन्ना डे को भी अब सुन रहे थे फिल्म एक फूल दो माली में। गीत रचना प्रेम धवन की थी, संगीत दिया था रवि ने। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। हम योग को अपनाकर बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक मानसिक व भावनात्मक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए एक दीर्घायु और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे नरेंद्र प्रसाद निराला। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होगा 0627222481, 0627222481। हमारा दूसरा नंबर है 9430029353 9430029353। समय याद रखें रविवार 21 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म काजल से।

इंद्रजीत सिंह तुलसी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोर से। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर, मन्ना डे और श्याम चितर। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे हमारे पुराने फिल्मी गीतों का। नए फिल्मी गीतों का अब आनंद लेंगे। पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म माँ से। गायक कलाकार हैं उषा उतुफ, गीतकार हर्ष उपाध्याय, संगीत प्रणव वत्स के ने दिया है।

स्वानंद किरकिरे के संगीत दर्शन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म लापता लेडी से। गीत लिखा था राम संपत ने। आइए सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है प्रशांत पांडे ने, संगीत राम संपत ने दिया है।

अरिजीत सिंह को अभी आप सुन रहे थे फिल्म लापता लेडी में। आइए सुनते हैं अगला गीत। श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म मां से।

इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म डंकी से। संगीत निर्देशन प्रीतम ने किया था।

किसी का भाई किसी की जान। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कमाल खान और पलक मुच्छल की आवाज़ में। गीत रचना सबीर अहमद की थी और संगीत धुन दिया था हिमेश रेशमिया ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिसन मंजू से राज बर्मन की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार कार्यक्रम में आप सब श्रोता सखी को आरती का प्यार भरा नमस्कार। सखी, हमेशा की तरह आज भी हम अपने चर्चा के जरिए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और साथ ही आपको प्यारे प्यारे गाने भी सुनवाएंगे। और हर दिन की तरह आज भी हम आपको वार्ता सुनवाएंगे डॉक्टर उपासना कुमारी से, पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। बहनों, प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपने घर बार छोड़ने से मजबूर हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है और उनके प्रति एकजुटता दिखाना है। ये दिन साहस और उनकी सहनशीलता को सम्मानित करने के लिए या फिर साथ साथ उन लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और जहां वे शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं वहां उन्हें सम्मान दिलाना है। इसके अतिरिक्त इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक शरणार्थी संकट का समाधान ढूंढना है और सुरक्षित प्रदान करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा एकजुटता का प्रदर्शित करना है। बहनों, दुनिया भर में युवा शरणार्थी अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं और अपने समुदायों को अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इस वर्ष का विषय है एक ऐसा विश्व जहाँ शरणार्थियों का स्वागत है। 20 जून 2001 को पहला विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1951 संधि की 50वीं वर्षगांठ की अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। तो बहनों, अंतराल में जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे विश्व शरणार्थी दिवस पे। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर, पर उससे पहले आपको सुनवा देते हैं वार्ता। वार्ता का विषय है योग एवं संतुलित आहार के द्वारा स्वस्थ कैसे रहे। वार्ताकार है डॉक्टर उपासना कुमारी। तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।
3: योग जीवन जीने की कला है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है, विज्ञान है एवं दर्शन है, जो शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है। यह संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल और फाइबर सही मात्रा में शामिल होते हैं। योग दिवस 21 जून को हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा 193 सदस्यों में से रिकॉर्ड 14 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को 193 सदस्यों में से रिकॉर्ड तोर 177 सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। योग शरीर मन एवं आत्मा के बीच संतुलन बनाने के लिए सर्वोपरि है। यह प्राचीन विज्ञान केवल लचीला पर और मजबूती प्रदान नहीं करता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करता है। एकाग्रता, आत्मनियंत्रण और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अत्यंत सहायक है। योग जीवन जीने के प्रमुख लाभ शारीरिक स्वास्थ्य। नियमित योगासन से शरीर लचीला, मजबूत और निरोगी बनता है। यह ब्लड प्रेशर, हृदय गति और वजन को नियंत्रित करता है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम और ध्यान मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ाते हैं, जिससे अवसाद और एंजाइटी दूर होते हैं और अनिद्रा दूर होती है। बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग श्वास प्रणाली और पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा और समग्रता बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। योग हर उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके लिए योग अति आवश्यक है। करें योग, रहें निरोग। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते बच्चों के लिए तारासन, सिंहासन, भुजंगासन, तितलियासन, जिसे बच्चे खेल खेल में करते हैं और आनंद लेते हैं, इससे उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है एवं उद्गीत करने से उनकी मानसिक स्थिति

दृढ़ एवं पढ़ने में मन लगता है। वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग शारीरिक संतुलन, जोड़ों के लचीलेपन और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाले जोड़ों के दर्द, तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। बढ़ती हुई उम्र में जमीन में बैठने में तकलीफ होती है। गर्दन को धीरे धीरे दाएं, बाएं और ऊपर नीचे करें। गोल गोल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। कम से कम 5-5 बार इन प्रक्रियाओं को दोहराएं। कुर्सी पर बैठकर शरीर को दाएं और बाएं मोड़ें। यह रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखता है एवं हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सांस अंदर लेते हुए छाती को बाहर निकालें एवं सांस को छोड़ते हुए पीठ को आगे झुकाएं। सांसों के द्वारा जो भी प्रक्रिया हम करते हैं उसे हम प्राणायाम कहते हैं। योग की भाषा में यदि हम कहें तो वह प्रक्रिया जो हमारे प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है उसे हम प्राणायाम कहते हैं। अनुलोम विलोम हमारी अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा कार्य करता है। किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं या फिर कुर्सी या सोफे पर भी बैठ सकते हैं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद रखें। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाई हथेली बाई घुटना पर रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में रखें। अनामिका एवं कनिष्ठा उंगली बाई नासिका रंध्र पर रखनी चाहिए। मध्यमा एवं तर्जनी को अपने ललाट के मध्य, जिसे हम योग में आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां हम बिंदी या चंदन लगाते हैं, रखें। अंगूठा को दाई नासिका रंध्र पर रखना है। बायां नासिका रंध्र खोलें और श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठा एवं अनामिका उंगली से बाएं नासिका रंध्र को बंद करें और अंदर श्वास को ग्रहण करें। अंदर जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं रोकें एवं दाई नासिका रंध्र से अंगूठा को हटाकर श्वास को बाहर छोड़ें। तत्पश्चात दाई नासिका रंध्र से श्वास ग्रहण करें। श्वास को लेने के बाद दाई नासिका रंध्र को बंद करें, बाई नासिका रंध्र खोलें तथा इसके द्वारा सांस को बाहर छोड़ें। यह पूरी प्रक्रिया नारी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इसमें श्वास अंदर रोकना अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम कुंभक कहते हैं। इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट तक करें। ध्यान रखना है कि श्वास क्रिया मंद, सामान्य एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होता है। जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, तनाव एवं चिंता को कम करता है। यह कफ विकार को भी कम करता है। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह साधक के चित्त को शांत करता है एवं मन की व्याग्रता को दूर करता है। जैसा कि शीतली प्राणायाम नाम से ही स्पष्ट है, यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करती है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में सामंजस्य बनता है और मन भी एकदम शांत चित्त रहता है। शारीरिक स्थिति, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कुर्सी या जमीन पर जिस पर आप बैठ सकते हैं। अपनी हाथों को ज्ञान मुद्रा या अंजुरी मुद्रा में रखें। जीव को किनारे से मोड़कर चम्मच का आकार दें या ट्यूब की तरह इसे गोल मोड़कर बनाएं। ट्यूब के बीच से फेफड़े के क्षमता अनुसार श्वास भरें। जीव को अंदर वापस ले जाएं और मुंह को बंद करें। अंदर रोकें जितनी देर रोक सकते हैं। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। इस अभ्यास को कम से कम 11 बार जरूर दोहराएं। यह शरीर और मन को शांत रखती है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति के लिए यह विशेष लाभकारी है। यह भूख एवं प्यास का शमन करता है, अपच से मुक्ति दिलाता है, पित्त एवं कफ का विनाश करता है। यह पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली के रोग से छुटकारा दिलाता है। यह त्वचा एवं नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। ठंड, कफ एवं टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी शब्द भ्रमर के से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भौड़ा

0: इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भंवर के गुंजन के स्वर की तरह होता है, इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, नासिका के द्वारा लंबा गहरा सांस लीजिए, नियंत्रित ढंग से सांस के धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए घन एवं लयबद्ध रूप से भौंरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे भी कम से कम 5 मिनट तक दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता अतिशय क्रोध से मुक्ति दिलाता है। योग के लास्ट में ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान निरंतर चिंतन मनन की एक क्रिया है। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा या अंजुरी मुद्रा में अपनी हाथों की स्थिति को रखें। हाथों कंधों को ढीला एवं शिथिल छोड़ दें। आंखें बंद कर शरीर को सीधा एवं शिथिल अवस्था में रखें। बाहरी दुनिया से अपने ध्यान को हटाकर अपने पूरे ध्यान को अपनी दोनों भौं के मध्य अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपनी आती जाती सांसों पर सजग बने। पूर्व के विचारों को छोड़ने की कोशिश करें। पवित्र एवं निर्मल विचार को अपने मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान करें, आपके अंदर जाने वाली श्वास आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा लेकर जा रही है एवं आपकी निकलने वाली श्वास आपके सारे विकार लेकर निकल रही है। यह अभ्यास कर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है एवं भय क्रोध अवसाद चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि योग एवं संतुलित आहार हमारे जीवन के को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। अब हम चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। बहनों, अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, हम योग को अपनाकर बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए एक दीर्घायु और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद निराला। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481, हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 21 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। तो बहनों, अब चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों, आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, भागदौड़ भरी दिनचर्या और तनाव या सही खान पान की कमी से हमारा सेहत पर बुरी असर पड़ रहा है। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान आदतें शामिल करें जिससे आप स्वस्थ रहे और खुशहाल रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, वो है सही और संतुलित आहार की। हमारे शरीर को काम करने के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होता है। अगर हमारी डाइट में ये जरूरी तत्व नहीं होते तो शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दाल और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें शामिल करें। श्रोताओं, खाने में अत्यधिक तली भुनी और जंक फूड से बचें। इनसे न सिर्फ वज़न बढ़ता है बल्कि ये शरीर में कई तरह की बीमारियाँ भी ला सकते हैं। कोशिश करें कि ताजे और घर पर बने हुए खाना खाएं। साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए और रोजाना व्यायाम करें।

शारीरिक गतिविधियां हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना और पानी की जरूरत पड़ती है। रोजाना थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करने से न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि मन भी तंदुरुस्त रहता है। आपको भारी भरकम वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे पैदल चलना, योग करना और घर के छोटे मोटे काम करने से भी शरीर एक्टिव रहता है। व्यायाम शरीर में रक्त का संचार अच्छा करता है और मांसपेशियां मजबूत बनाती है। इसके साथ ही शरीर में बढ़ा हुआ वजन भी कम होती है। अगर आप काम में व्यस्त रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफिस के ब्रेक के दौरान थोड़ी देर टहलना, ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करने से आपको आदत पड़ जाएगी या आदत लग जाएगी। बहनों, इससे आप फिट महसूस करेंगे, साथ ही तनाव से भी दूर रहेंगे। तनाव की अगर हम बात करें तो तनाव जो है ना केवल मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लगातार तनाव में रहने से शरीर में कई बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे हृदय रोग या ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर पाचन तंत्र में गड़बड़ी होना। इसलिए खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना ये तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कभी कभी आराम करना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी काम करना होता है उतना ही ज़रूरी आराम करना भी होता है। तो बहनों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना ये बहुत ही ज़रूरी है। जब आप हंसते हैं तो आपका मन खुश रहता है और तनाव से दूर रहता है। तो बहनों, हंसे, मुस्कुराए और अपने जीवन को एक हिस्सा बनाए और परिवार को भी खुश रहना सिखाए। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक

अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं अब जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में। दोपहर 2:10 पर आप 1:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 1:15 पर हम आपको सुनाएंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम यानी आपकी पसंद। 2:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना। 2:30 पर पुनः पैनल लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। प्रादेशिक संगीत मराठी में हम आपको सुनवाएंगे 2:03।

दोपहर 3:55 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली स्थित तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने का जीवंत प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही सुनेंगे आप युवा को संबोधित कार्यक्रम संध्या 5 बजे युवा युववाणी में श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। साथ ही

5:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। विद्यापति गीतों का आनंद ले सकेंगे। संध्या 6:10 पर गांव घर कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे झरोखा 6:30 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:00।

संध्या 7:52 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे रात्रि 8:00। विज्ञान कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे 8:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम निर्णय समाप्त होता है।

श्रोता, आप सुन रहे थे हमारे आज के आगामी प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है पसंदीदा गीतों पर आधारित कार्यक्रम यानी आपकी पसंद का। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र। पहला पत्र आया है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से। ये हैं मुसरत जहानाज, तलह जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज। करल बिहार से बेगम निकहत परवीन, सफद आरजू। इन लोग की फरमाइश है, इन लोगों ने सुनना चाहा है संगम फिल्म का यह गीत। कलाकार है मोहम्मद रफी। गीत लिखा है हजरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। एक और पत्र आया है जो है नगर निगम वार्ड 28 से नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से। अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, समीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इसरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। इन लोगों ने लिखा है कि आप अपनी पसंद

0: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म का यह गीत। गीतकार थे नकास लैलपुरी और संगीत निर्देशन खय्याम ने किया था।

इस गीत की फरमाइश आई थी महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शेला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, चांडूर विश्वा तालुका नादुरा जिला बुलडाना महाराष्ट्र से नारायण भावखर से, रक्षाताई खर से, ललिता संजना खर से, गणेश और कार्तिक खर से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, इन लोगों की फरमाइश थी। पसंदीदा गीत अभी आप सुन रहे थे। अगली फरमाइश पसंद आई है जो इन्होंने पत्र के माध्यम से भेजा है। इन्होंने यह सुनना चाह रहे हैं आस का पंछी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत रचना हसर जयपुरी ने की है और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है शंकर जयकिशन ने। यह गीत पसंद किया है नाहर मंटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान,

हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत रचना हसरत जयपुरी ने की है और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है शंकर जयकिशन ने। यह गीत पसंद किया है नाहर मंटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। सेक्टर 63 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। इन लोगों ने लिखा है एनी सॉन्ग फॉर योर चॉइस, तो क्यों ना हम आपको इसी गीत में शामिल करते हैं। ठीक ऐसा ही एक और पत्र आया है, इन्होंने भी लिखा है आप अपने मन से हमें कोई भी गीत सुना दें। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहनी, पिंकी सहनी, डॉक्टर अफजल मल्लिक, अमोल मानकर। रामगढ़ कैंट झारखंड से निपे सहनी, सुनीता सहनी, संदीप मकर। आइए सुनते हैं आप लोगों का पसंदीदा यह गीत।

इज्जत फिल्म का अभी आप गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद किया था इनामत टोला भगवतीपुर बिहार से, नूतन सहनी, रासो सहनी, कंचन सहनी, रिंकू देवी, बबीता सहनी, रुचि कुमारी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, नीसु कुमारी, एसके सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी। इसी गीत की एक और पसंद फरमाइश आई थी राजनगर मधुबनी से, राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रवि राज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एस के गुप्ता एवं इनके मित्रगण। छपरा दादली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, सज्जीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत गुप्ता एवं सुधांशु गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से आप हैं प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मंटो कुमार गुप्ता, निक्की कुमार गुप्ता। पुलवासरी पटना से अविनाश चंद, ज्योति गुप्ता, जाह्नवी और पीहू। इन लोगों की यह फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला पसंदीदा गीत इन्होंने लिखा है। ये हैं जातुका किशनपुर से, इनकी फरमाइश है, यह सुनना चाह रहे हैं फिल्म पगला कहीं का। यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत रचना हसर जयपुरी ने की है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। आप हैं जादुका किशनपुर से, आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चानी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना केसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, पुणे से पंकज आर्या, प्रियंका आदि, जरूर वरुट से बाबा साहेब वरोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, आदर्श नगर मटोल राज से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, नवीना शर्मा। इन लोगों ने लिखा है, आप अपने पसंद का कोई भी गीत सुना दें, क्यों ना हम इस प्यारे से गीत में आपको शरीक करें। इसी तरह का एक और पत्र आया है जो है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से। आप हैं विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुनत, चेतन नाहरा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मुनत। इन्होंने लिखा है, आपकी पसंद का कोई भी

नगमा आप मुझे सुना दें, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप अपने पसंदीदा गीतों को इस पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं और हम भी आनंद लेते हैं इस सुंदर सुंदर गीतों का, और साथ में आप सारे श्रोता भी आनंद मग्न होते हैं यह गीत सुन के। आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

धूल का फूल। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में और महेंद्र कपूर को। यह फरमाइश आई थी लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, रेंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश वर्मा, दतरेगी से भागवत वर्मा, फुटानी चौक नरहना स्टेट से भाई फटपटिया झा, पुलिस श्रीदेवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, डोंगरा गांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। इन लोगों की फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। अगली फरमाइश आई है ग्राम महसेलवाड़ी तहसील मालकापुर महाराज से शत्रुघ्न थाने, वाल्मीकि थाने, नीनाजी थाने, स्वप्निल थाने, अजय खिरोरकर। एक और फरमाइश है, यह है औरंगाबाद से, आप हैं राजेश, साबले पाटिल, सीता राजेश, राजीव राजेश, राशि राजेश, कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, बंस बत्ता, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतक बीरक, मीका बीरक, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी बबलू डोम, सोनिया सरगुज्जा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। इन लोग का इन्होंने लिखा है सादर नमस्कार। कोई भी गीत, फिल्म का गीत आप हमें सुना दीजिएगा, सधन्यवाद। तो क्यों ना हम आपको इसी फिल्म का गीत सुनाने जा रहे हैं, महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इन लोग की फरमाइश है हमराज फिल्म का गीत यह सुनना चाह रहे हैं। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ यह इस पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम से अब दीजिए हमें विदा। आप यूं ही अपने प्यारे प्यारे पत्र हम तक भेजते रहिएगा। श्रोताओं, अब समय अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम से श्री मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के 73,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की जाएगी। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा के मद्देनजर बेली रोड पर मेट्रो कार्य के लिए आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए कल विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में भी योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में आरोपी युवक को कुसुम्बा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से रफीगंज गोह मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। अररिया जिला अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए LIA की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला प्रशासन, SSB और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की रकम जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद मगरबी बंगाल के हुगली में मुनाक़िद प्रोग्राम से जनाब मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में DBT के ज़रिए 18,880 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल करेंगे। बिहार के 73,00,000 से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में इस स्कीम की रकम मुंतकिल की जाएगी। इस मौके पर पटना के बामिती ऑडिटोरियम में मुनाक़िद होने वाली तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रहेंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल होने वाले नीट UG री एग्ज़ाम से कबल आज कौमी सतह के मॉक ड्रिल का इनाकात कर रहा है। इम्तहान से कबल मेयारी तैयारी के जायज़ा के लिए यह मशक किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत रियासत के अहम मराकज़ पर इम्तहान का इनाकात का कबल अज वक्त मशक किया जा रहा है। इसके पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम में भी तब्दीली की गई है। नीट री एग्ज़ाम के लिए रियासत के 34 अजला में 331 मरकज़ बनाए गए हैं। इम्तहान में 1,56,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के शरीक होने का इम्कान है। इम्तहान के मद्देनज़र बेली रोड पर मेट्रो काम के लिए आज से मुजवज़ा ट्रैफिक ट्रायल भी फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। इधर रियासती हुकूमत ने बदउनवानी से पाक माहौल में इम्तहान मुनाक़िद कराने के लिए हिफाजत के बेहतर इंतजाम किए हैं। इम्तहान दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट खसूसी बसें चलाएगा। साथ ही रेलवे की जानिब से कल नीट इम्तहान उम्मीदवारों के लिए खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें बैनुल अक्वामी यौम योगा के मौके पर कल मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैनुल अक्वामी यौम योगा के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता में मुनाक़िद होने वाली मरकज़ी तकरीब में क़यादत करेंगे। इस साल यौम योगा का थीम है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में योगा कैंप और योगा बेदारी के प्रोग्राम मुनाक़िद किए जाएंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनाक़िद होने वाली मरकज़ी तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत रियासती काबीना के कई अरकान शरीक होंगे। वहीं

रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी योगा की मशक के सेशन का इनाकात किया जाएगा। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर अजला में लू चलने के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आज रियासत के शुमाल और जनूब मशरक़ी हिस्सों में कुछ मकामात पर तेज़ आंधी के साथ बारिश हो सकती है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहा लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में मुलविस मुलजिम नौजवान को कुसुम्भा थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद ज़िला के रफ़ीगंज थाना इलाके में रफ़ीगंज गोह शाहराह पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा के दरमियान होने वाले तसादुम में दो अफराद हलाक हो गए, जबकि दो दीगर ज़ख्मी हुए हैं। अररिया ज़िला के सरहदी इलाकों में अमन व अमान और सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए LIU का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें ज़िला इंतज़ामिया, SSB और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का यह बुलेटिन अब ख़त्म होता है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 कुल पद 1829 निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। इसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। JKSSB 2026 कुल पद 130 निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की अंतिम पहली तिथि 22/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21/7/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा तय नहीं है, अधिकतम उम्र सीमा 40 है। इसकी विस्तृत जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर jkssb.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 के कुल 607 पद निकाले गए हैं। आवेदन शुरू करने की तिथि 4/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/7/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। SSC CGL 2026 कुल पद 12,256 निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 21/5/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 22/6/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, अधिकतम उम्र सीमा 32 साल है और इसकी विस्तृत जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। BSNL ने 2026 में कुल 100 पद ज्ञापित किए हैं। आवेदन शुरू करने की पहली तिथि 4/6/2026 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। इस पद के लिए आप यदि आवेदन कर सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर देख सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम योग को अपनाकर बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए एक दीर्घायु और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ कैसे करें योग, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे नरेंद्र प्रसाद निराला। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर होगा 0627222481। दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखिए रविवार 21 जून 2026 दिन के 11 बजे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम दिल्ली से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रगति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी,

0: अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई।

0: सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाईब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है।

भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने, संगीत निर्देशन नदीम सर्व ने किया था। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी। गीत रचना समीर की है और इस गीत को अपने धुनों से संवारा है नदीम सरवन ने।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग द फायर में। गीतकार समीर और संगीतकार राजेश रोशन। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। कलाकार हैं अजीत करकड़े।

श्रोताओं, आप सुने थे अजीत के सुर में प्रादेशिक संगीत मराठी में। इसी के साथ प्रादेशिक संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यही समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं और मैं यह झूठ मूठ। चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी। हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जरा आगे।
1: जिनी,
0: हाँ?
1: तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुडू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से। और अब इस सांझ ठेले तक?
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं, तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ जाओगी
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन नॉलेज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
3: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कभी नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
2: हाँ जाओ जाओ।
3: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
3: ओह,

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे?
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं का।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेन से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई। हाँ? पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।

0: बात है बेंच, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
1: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
0: हाँ
1: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
0: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
1: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
0: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
1: नहीं,
0: कुछ भी नहीं समझते?
1: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
0: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
1: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
0: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
1: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
0: बेंच,
1: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जीनी।
0: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूं।
1: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जीनी।
0: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
1: जिनी, हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
0: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
0: हाँ मौसी, हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
0: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव चरित्र।
1: विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर। यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉलिक कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 3:55 हो चुके हैं और हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली स्थित तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने का जीवंत प्रसारण।

ये आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव

0: ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस। और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all

0: 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years. During the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also

0: fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways, then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: Bilkul, Vikasit Bharat ki baat aapne ki hai aur ek sarkar ki ek jo nai

नवंबर 2000 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक गोट प्रस्ताव पारित कैल गेल। ओहि प्रस्ताव में अर्थात एहि दिन के विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाबाक घोषणा कैल गेल छल। अपना सबके बुझल होयत जे 20 जून 2001 के पहिल बेर विश्व शरणार्थी दिवस मनाओल गेल छल। ओहि के बाद लगातार आइ धरि विश्व शरणार्थी दिवस अपना सब 20 जून के मनबैत रहलहुँ। श्रोता लोकनि, बरख 2000 के आजुक दिन अर्थात 20 जून के शरणार्थी लोकनिक स्थिति से संबंधित 1951 के ऐतिहासिक कन्वेंशन के 50वां वर्षगांठक प्रतीक अछि ई विश्व शरणार्थी दिवस जे आइ अपना सब मनबै छी। एहिसँ पहिने एहि दिवस के अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में सेहो मनायल जाइत छल। श्रोता लोकनि, अपना सब कल्पना कऽ के तऽ दुख के एहसास कऽ सकै छी जे अपन बरखो बरख पुस्तैनी आवास अपन जगह के कोनो प्रकार परिस्थितिये में सही जे केओ छथि हुनक असियाना के केना दिलै मानव के सहायता शरणार्थी जिन जे जगह पर अबै छथिन हुनका अभय दान देबाक चाही। श्रोता देखैत हेबै जे शरणार्थी के साहस परिस्थितिमे

1951 के अनुसार व्यक्ति के उत्पीड़ित जगह पर वापस नहीं कर सके कानून श्रोता लोकन शरणार्थी के ओहि देशक नागरिक के समान एक संग बुनियादी मानवीय अधिकार जना कि शिक्षा स्वास्थ्य सेवा ऐ सब तरहक आवश्यक आवश्यकता के सेवा ओहि देशक नागरिक जकां शरणार्थियों के भेटबाक चाही। श्रोतागण अपना सब सबक संस्कारे त अछि जे अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि जिनकर कोनो तिथि नहि हुए ओ कखनो कतौ कखनो ककरो लग आबि सकै छथि। एहि अनुसारे शरणार्थी के रक्षा करब जँ ई कहब छै जे ई करुणाक काज छियै मानवता के काज छियै ते मिथ्या नहि छै। शरणार्थी के आवश्यक सुविधा अपन नागरिक के समान देव स्थिरता और शांति के लेल अनिवार्य होइत छै। ई देशक जे केओ जै देश में जे केओ शरणार्थी अछि ओकर समान ओ अपन देशक समान जे नागरिक के भेटै छै ओहि शरणार्थियों के ओ सुरक्षा देबाक चाही ओ आवश्यक आवश्यकता देबाक चाही। ई देश के स्थिरता के लेल अनिवार्य सेहो छै किएक तऽ सभक साथ सभक विकास होयत तखने मानव समाज आ देश सुरक्षित संग प्रसन्न रहत। श्रोता लोकनि आइ 20 जून 2026 के 75वां विश्व शरणार्थी दिवस अपना सब मना रहल छी। आजुक परिवेश में दुनिया भरिक लेल सुरक्षा उपाय के सख्त आ बेसी आवश्यकता अछि। अस्तु समय के अनुकूल पुनः गप करब ताबखन अपना सब एकटा मैथिली लोकगीत सुनै छी तऽ सुनी ई गीत।

हाँ हे तिरहुत हे मिथिले ललाम हे मातृभूमि शत शत प्रणाम। ममता ठाकुर के स्वर में बहुत सुंदर गीत अपना से सुने चलो। देखियो तिरहुत अर्थात मिथिला, मिथिला त विश्व के जगत गुरु कहल जाए छे मिथिला के। देखियो न सब ठामक माटि जे छे से अन्न दै छे, फल दै छे एवं प्रकारे तीमन तरकारी दै छे। मिथिलो में जमीन से माटि से ई सब चीज त अपना सब के उपजते अछि। एकर माटि जे छे सेहो सुगंधित छे आ खुशबूदार छे, मटियारी माटि कहल जाइ छे केकरा। आ एहि माटि से फल फूल तीमन तरकारी त भेटते अछि। एहि माटि माटि जे अछि से जगत जननी जानकी के सेहो प्रादुर्भाव केने अछि मिथिला के माटि। त मिथिला जे छे से जग माँ सीता के जन्म भूमिक छनि, एहि माटि से माँ सीता प्रकट भेल छी। तऽ ई गीत जे छै एकदम यथार्थ हुनका स्वरमे अपनासँ सुनलहुँ जे हे तिरहुत हे मिथिले ललाम। ई जे मिथिला जे छै से नमन योग्य छै, एकर सत सत प्रणाम एकदम अक्षरसँ सत्य छै, निश्चित छै। देखियौ जगत जननी जगदम्बाके जतय प्रादुर्भाव भेल जानकीके, तऽ ओतय तऽ ओहि जगहके जे भी कोनो शब्दसँ वर्णन करब दुरू छै। तऽ एहि तरहे मिथिला जे अवर्णीय अछि, एकर जतेक भी अथी गप करब, जेना सूर्यके दीपक देखेनाइ एकटा छै जे हँ दीपक देखियौ सूर्यके आगूमे दीपक जेलासँ की इजोत हेतै, तहिना मिथिलाके कतेक वर्णन करब, ई अवर्णीय अछि मिथिला। श्रोतागण ई गाम घरक कार्यक्रम जे छै आब सम्पन्न होबापर अछि। आ एहि दलानपर कार्यक्रम जे छै गाम घरक झरोखा ओकरा समटैत आ बेर भऽ रहल अछि खेती गृहस्थीके। तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रममे सब किसान भाइ लोकनिके स्वागत अभिनन्दन सङ्ग नमस्कार अछि। किसान भाइ लोकनि अपन सभक देश भारत गामक देश अछि, सङ्गे भारत कृषि प्रधान देश सेहो कहल जाइत अछि। अपना सभक जीविकोपार्जनके मुख्य साधन खेतीय पथारी अछि। किसान भाइ लोकनि अपना सबके बुझल अछि जे भारत माताके सच्चा संतान तऽ किसान भाइ लोकनि आ श्रमिके छथि। किसान भाइ लोकनि जतेक मेहनतसँ खेती पथारी करैत अपन सबके मालजाल ओ सब जेना खेती पथारीके लेल पोसैत छथि, ओहिके लेल जे खेती पथारीमे मालजाल सहयोगी होइ छै। आ देखियौ मालजाल जे पोसैत छथि खेती पथारीमे जे जैविक खाद जे होइ दै छथि किसान भाइ लोकनि, ओकर प्रमुख स्रोत जे छै मालजालके गोबर आ निंघेससँ बनैत अछि जैविक खाद। सङ्गे मालजालसँ जेनाकि गाय महीँस एहि सबसँ दूधक उत्पादनसँ खूब नीक आमदनी होइत अछि। आ कहल जाइ छै जे दूधके सम्पूर्ण आहार, तऽ सेहो किसान भाइ लोकनिके सम्पूर्ण आहार पर्याप्त रूपसँ अपन प्योर मालजालके पोसिकऽ प्योर दूधके सेहो बढ़िआँसँ अपन उपयोग करै छथि। देखियौ किसान भाइ लोकनि मालजाल पोसैत छथि नीक आमदनी बरकरार रखबाक लेल, तऽ मालजालके पोसबाक लेल सुरक्षित राखब सेहो आवश्यक छै। कहबाक तात्पर्य जे मालजालके कोनो तरहक रोग व्याधि नहि होइ, एहिके लेल मालजालके होइवला सामान्य रोग आ ओहि रोगक उपचार केना होइ छै, एकर जानकारी किसान भाइ लोकनिके सामान्यतया सेहो राखक चाही। जे मालजालके पोसै कालमे ओकरा जे कोनो तरहक रोग व्याधि होइ छै, तऽ ओकर उपचार अपने केना कए सकै छी। किसान भाइ लोकनि मालजालमे सामान्यतया किछु रोगक जे होइ छै, एहिमे सामान्य रोग छै जेनाकि खुरपका मुँहपका रोग। एहि रोगके शिकार मालजालके जखन तेज बुखार बुझायत, मालजाल मुँहसँ लार खसबऽ लागत, मुँहमे छाला भऽ जाइ छै मालजालके, तऽ मालजालके छाला होइत मुँहसँ लार निकलैत रहत, खूरमे जे छै घाव जकाँ बुझा पड़त, खूर जे छै लाल भऽ जाइ छै, मालजाल जे छै नेंगराके सेहो चलैत रहैत अछि। एहि सब तरहक जखन समान लक्षण मालजालमे देखा लागय देखबा योग्य आबऽ लागय, तऽ ओकरा कोनो नीक मवेशी डॉक्टरसँ मालजालके देखबा देबाक चाही। जा धरि डॉक्टरके

हमरासँ बजायब ओ एता, ता धरि मालजालके मुँहक घाव वा छाल जखने रहित अछि तहन फिटकिरीके पानिसँ ओकरा धोइ देबाक चाही। पुनः मुँहमे मौध आ सोहागाक लेप लगा देबाक चाही। किसान भाई लोकनि, एहि तरहक संक्रामक बीमारीसँ मालजालके बचेबाक लेल 6 महीनापर टीकाकरण सेहो अवश्य करा देबाक चाही। देखियौ, मालजालके जे खुरपका मुँहपका रोग भऽ जाइत अछि तऽ ओ भोजने नहि करता, जब भोजन नहि करता तऽ बीमार भऽ जेता। किएक तऽ छै जे भोजन करथिन तखने ओ जेना बरद छथि तऽ खूब खेता, तखने ओ हर जोति सकैत छथि, गाड़ी घीच सकैत छथि या कोनो प्रकारक काज कए सकैत छथि। एहि तरह जँ गाय महीँसके खुरपका मुँहपका रोग भऽ जायत तऽ भोजने नहि करत, भोजन जखने नहि करत तऽ ओकर दूधपर सीधा असर पड़ैत छै, तुरंत दूध ओकर कम भऽ जाइत छै। आ दूध कम 1-8 दिनमे भऽ जायत आ फेर ओ बीमारीके ठीक होइत होइत ओकरा भोजन नीक सीख दैत दैत सप्ताह लागि जाइत छै ओकर दूध पुनः वापस अबैमे। तैँ खुरपका मुँहपका रोगके निवारणके लेल 6 महीनापर टीकाकरण कऽ देबै तऽ मालजालके ई रोगसँ सुरक्षित रहत मालजाल, एहि तरहक रोग नहि हेतै। देखियौ किसान भाइ लोकनि, मालजाल जेना गाय महीँस बकरी एहि सब तरहक दुधारू पशुके थनैला सेहो एकटा संक्रामक बीमारी होइ छै। थनैला जे छै एहि लक्षण जखने भऽ जाइ छै तऽ थनमे सूजन, थन फूलि जाइत अछि, करगर भऽ जाइ छै आ छिमरा सबके से दूध जे ओहिसँ निकलै छै ओकर रंग जे छै से उज्जर नहि रहत, ओहिमे लालीपन ओहि दूधमे होइ छै। एहि थनैला बीमारीके मुख्य कारण अछि थनमे कोनो तरह गंभीर रोग या गंभीर चोट जे भऽ जाइ छै तऽ ओहिसँ ओहि तरहक थनैला बीमारी भऽ जाइ छै। थनैला बीमारीसँ संक्रमित पशुके थनके पोटासियम परमांगनेटके सुसुम पानिमे मिलाकऽ थनके नीक जकाँ धोइ देबाक चाही आ कोनो नीक पशु चिकित्सकसँ ओकरा देखा लेबाक चाही। श्रोतागण, समयानुकूल पुनः गप करब। अखन अपनासभ एकटा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनै छी तऽ सुनल जाए ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान हौसलों की, उड़ान कुछ नए सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाकर बेताबी से आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम उड़ान। जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा नंबर लिख लें। तो श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी फिरोज फरीदी जी और आशिमा पत्रा जी। तो आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे।
1: दोस्तों, एक बार फिर हम सामाजिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जीवन से संबंधित हम बातचीत करेंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान सफल जीवन में होना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से निराश होकर के अपने जीवन ही को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाबी और नाकामी ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं और ये हमारी ज़िंदगी में आते और जाते रहते हैं। हम इसे क्या सीख हासिल करते हैं या हम इस असफलता को किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, ये चीज़ जो है वो मायने रखती है। हम इस पर बातचीत करेंगे।
2: सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई बहनों से, अपने जवान बच्चों से बातचीत कर पाऊँ। और ये जो बात आपने बोली कि हम लोग हार जाते हैं, अपना लक्ष्य खो देते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोच गलत है। और इसका एक और भी बहुत से पहलू हैं और हमें अपनी सोच को चैलेंज करना है, बदलना है। आज ही आपसे जब बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि एक लड़का था जिसका नाम है अनुराग पाठक, वो 12वीं फेल था, लेकिन उसने अपनी लगन

0: 1 से IAS क्लियर किया और आज वो एक IAS ऑफिसर है। क्या आप समझ सकते हैं, हमारा देश तो दीवाना है, हम सब IAS करना चाहते हैं, सारे माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे IAS ऑफिसर्स बने, और हम ये, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं।
1: जी बहुत सही कहा कि इस तरीके की चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में, और जब हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत बार हमें सफलता मिलती है और बहुत बार हमें असफलताओं का सामना करना होता है। और अब जिस तरीके से आपने अनुराग पाठक का मिसाल दिया, ये हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, ये हम सब के लिए जो है उदाहरण हो जाए। बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए चले गए, असफलताओं से टकराते हुए, असफलताओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जिंदगी में एक नए मुकाम को उन्होंने हासिल किया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए असफलता भी बहुत जरूरी है, असफल होने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, हमें समझ में आता है ठीक है ये चीज मेरे से फेल हो गई तो मुझे अब इसमें से क्या सीख मिली, कहाँ पे मेरी कमी थी, उसको कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों को बिल्कुल होता है, जैसे आई एम श्योर अनुराग पाठक ने कहा होगा मुझे IAS ऑफिसर बनना है लेकिन मैं 12वीं फेल हूँ, तो उसने तरह तरह की रिसर्च करी होगी, समझा होगा कहाँ पर उसको वर्क करना है, कौन से एरिया उसके कमज़ोर है, कौन से एरिया में वो उसकी पढ़ाई अच्छी है, कहाँ पर वो बढ़ सकता है, और उसने उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए IAS क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूँगी, आपको अगर पक्का मालूम है कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये जरूरी, जैसे 12वीं की और ग्रेजुएशन इट इज़ मैंडेटरी, ये जरूरी है और बहुत अच्छा रहेगा, और मैं आप सबको अर्ज करना चाहूँगी आप सब ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी फसल अच्छी हो, आपके माहौल अच्छा हो, आपका घर अच्छा, आपका फैमिली अच्छी, आपको एक अच्छे परिवार में आपकी शादी हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होइए, आप गिव अप मत करिए। तो यहाँ तक जब ग्रेजुएशन का लेवल है वहाँ पर आपको एक अपना कोर्स करिकुलम पता है, अगर आपकी कमजोरी है आप ध्यान दीजिए किस एरिया में मैं कमजोर हूँ, और ज्यादातर आप देखेंगे आपको सब कुछ आता है, हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनका IQ भी बहुत हाई है, उनका EQ भी बहुत हाई है, इमोशनल क्वेश्चन, प्रॉब्लम पता क्या है, हम लेजी हैं, हम आलसी हैं और हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग गिव अप कर देते कि नहीं चलो छोड़ो कभी और करेंगे, तो वो जो बात है जो आलस है या अपने अच्छे के लिए कुछ मेहनत करना ना करना, ये है आपको इसमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। अभी मैं एक लड़की को काउंसिल कर रही हूँ जो कि राजस्थान में है और उनकी शादी हुई और अभी उन्होंने 12वीं पास करी और बुरे नंबर नहीं है, 67% उनके नंबर आए, लेकिन उनके साथ में एक बेबी भी हो गया, अचानक से उनकी शादी हो गई, अब वो मुझे ये कह रही हैं कि मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, तो मैंने उनको ये मोटिवेट करा, नौकरी आपने अगर अभी कर ली पैसे का एक दफ़ा आपको टेस्ट लग गया तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर आप चाहती हो आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी मिले 25,000 से 50,000 से आपका स्केल शुरू या जितनी भी मिलती है और एक अच्छी इनकम हो, तो उसके लिए एक दफ़ा आप इंतज़ार करके ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, साथ में आप कुछ ने छोटे बच्चे को संभाल रही हैं तो आप पार्ट टाइम कर लीजिए, और उसके बाद क्या है कि आप उस पार्ट टाइम में आप जॉब भी कर पाएंगी कोई 4 घंटे की 3 घंटे की और आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जो आपके नौकरी के ऑप्शंस आएंगे वो कितने अच्छे होंगे, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। तो ये बात उनसे कई दिनों से हो रही थी और उनको ये बात समझ में आई, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, बच्चा सिर्फ 4 महीने का है, तो उनको ये था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन मैं आज आपको सबको ये कहना चाहती हूँ आपकी जो भी परिस्थिति है, हमारी सरकार ने हमको इतने सारे ऑप्शन दिए, वो चाहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग पढ़ें, ग्रेजुएट बने, MBA करें, MA करें, मास्टर्स करें, तो हमारे पास कोई कमी नहीं और पैसे कोई ज़्यादा फीस नहीं है, सब कुछ वर्कआउट हो सकता है, आप मन तो बनाइए, एक दो मन तो बनाइए और उसके साथ साथ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, और अनुशासन से आप इस काम को पूरा कर पाएंगे।
1: नौजवान दोस्तों, आप लोगों के लिए ये हमारी गुजारिश है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये प्रोग्राम हम आपके लिए बनाते हैं और ये सारी बातें हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम बना रहे हैं। जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते होते हैं या जब हम जॉब की तलाश में होते हैं, तो हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है, और आपके लिए हम इस कार्यक्रम को खास करके बना रहे हैं कि आप जानें कि ज़िंदगी में हमें किस तरीके से जद्दोजहद करनी है, ज़िंदगी

0: में किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है आशमा जी कि हम जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, असफलताएं आती हैं, और असफलताएं जब आती हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा दोस्त जो था, मेरा साथी जो था, वो तो सफल हो गया, वो कामयाब होकर के आज अच्छे पोस्ट पर है, या अच्छा बिजनेस वो कर रहा है, आज अच्छा स्थान समाज में उसको प्राप्त हो गया है, लोग अच्छी नज़र से उसको देखते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में सफल हो गया, और ये बहुत बड़ी निराशा का कारण होता
1: बन जाता है जब हम अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हर इंसान की का सफर अलग है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद भी अलग है, और हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं। अब आपके माँ बाप आपको कितना पढ़ा पाए, उनके पास कितने रिसोर्सेस थे, कितना था नहीं था, तो आज आप यहाँ पहुँचे, लेकिन क्योंकि हमारी भारत सरकार ने हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, हम लोग कोई भी कोर्स करके अपने आप को स्किलफुल, हम अपने स्किल बढ़ा सकते हैं, हम यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ पर हमें जो सीखना है हमारे कोर्स के लिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर 300 रुपये में कोर्स हो रहा है, 500 रुपये में कोर्स हो रहा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए। आप पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी अपने शाम को जा करके, और जब वो स्किल आप में आ जाता है, अपने बॉस के पास जाइए, सर मैंने ये भी सीखा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ये भी सीखा, मेरा ये सर्टिफिकेट है और मैं अब ये काम कर सकता हूँ, बॉस से बात करिए और आप देखेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आप में अगर मिठास की कमी रह गई तो आप अपने माता पिता को मत कोसिए, मेरे माँ बाप तो कितने बेकार है, उसके माँ बाप को देखो वो कितने अच्छे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, नहीं, ये अगर आप करेंगे तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप गॉड से दिए गए हैं, परमेश्वर की वो आपका एक वरदान है, उनको ऐसे कोसना नहीं है, लेकिन आपको अब मेहनत करके अपने अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, और सब कुछ अवेलेबल है।
0: लेकिन कभी आशमा जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में एक बार रुक करके अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हमने किसी गलत चीज़ का चुनाव तो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर लिया है, जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है।
1: बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए, अपने ऑफिस के कोलीग जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कशंस करने चाहिए। साथ में अगर हो सके हमें किसी ऐसे बड़े इंसान जो हमसे 4-5 साल बड़े हैं, या जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 4 साल स्टेप्स हमसे आगे हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, सर मैं क्या आपके साथ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का, और आप, ये मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल करियर में, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है, मुझे और किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था, किसी और नौकरी में, किसी और धंधे में होना चाहिए था, तो ये आप ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, पूछिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, तो आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता और हम उसी चीज पे चले जा रहे, हो सकता है हमें रास्ता बदलने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सही, इसलिए कि हमारे सामने उदाहरण है कि बहुत सारे इंजीनियर थे या बहुत सारे डॉक्टर थे, और ज़िंदगी में शायद उन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं किया, या बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन जब वो IAS ऑफिसर बने या IPS ऑफिसर बने, उन्होंने लाइन अपनी बदली और उन्होंने तैयारी की, और उसके बाद वो IAS के रूप में या IPS के रूप में वो चुने गए, और उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद अच्छे IAS ऑफिसर वो बने या अच्छे IPS ऑफिसर बने, और समाज को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें एक मिनट रुक करके अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ करके सलाह लेने की ज़रूरत है कि क्या हमने ज़िंदगी में जो चुनाव किया है वो सही है या नहीं है, इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि गुण कुछ और है करने का, क्वालिटी हमारे अंदर कुछ और है, कोई कला हम किसी और किसी कला में हम पारंगत हैं, लेकिन दुनिया को देख करके हम दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, भेड़ चाल चलना जिसको कहते हैं, कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, या माता पिता भी कहते हैं कि हमें हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आप अपनी लियाकत को देखिए, अपनी खूबियों को देखिए,
1: और अपनी जो कमियां हैं उनको आप मानिए कि हाँ ये मेरी कमियां हैं और मेरी ये खूबियां हैं, उनको समझिए, और जब आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो आपको सलाह देंगे, आप ये देखिएगा कि वो सचमुच में उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और उन बातों को समझते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे, उन लोगों के पास मत जाना जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहूंगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए।

0: और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी हों। मत घबराइए, मत डरिए। अगर जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है, अगर जिंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो कभी भी आप हिम्मत न छोड़ें, कभी भी आप अपने हयाव को खोने न दें, बल्कि जिंदगी का मुकाबला करें। एक बार रुक करके अपने चयन पर, अपने चुनाव पर जो कार्य आप करना चाहते हैं, उसके बारे में भी गौर करें कि आपका चुनाव जो है सही है या नहीं। इसके लिए आप दूसरों से मशवरा लें और सलाह लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, और आपके लिए हम अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, सफल जिंदगी की कामना करते हैं।
1: और श्रोताओं, अब हम धन्यवाद देंगे अपने कुछ श्रोताओं का, जिनका नाम है कुलदीप कुमार कानपुर से, सुनीता मौर्य बहरेज से, शैलेंद्र कुमार जौनपुर से, राजेश पाठक गोंडा से और संदीप यादव जी बाराबंकी से। हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिसनर मीटिंग में हिस्सा लिया। जी हाँ, और अपने विचार हम तक पहुंचाए। आप सबका धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को, अनुभवों को हमसे साझा करें। हमारा नंबर है
2: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
1: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो आप मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

हाँ, अखन अपना सब ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनै छलहुँ आ एहिसँ हमर युवा लोकनि खूब लाभान्वित हेताह। आ श्रोतागण, किसान भाई लोकनिके एकटा अखन खेती गृहस्थी कार्यक्रम चलि रहल अछि, किसान भाइके समर्पित एकटा ई भगवती गीत अखन साँझक पहर अछि, तऽ सुनै छी कुञ्ज बिहारी मिश्रसँ ई भगवती गीत।

हाँ, कुंज बिहारी मिश्र ई गीत सुनै छलहुँ। आब खेती गृहस्थीके बेर सम्पन्न होबा पर अछि। किसान भाई लोकनिसँ आब आज्ञा लेल जाय। नमस्कार।

ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर एवं खेती गृहस्थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की गई है। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया गया। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को परखा गया। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट

0: व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा, साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।
1: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति की कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने अपने बयान में मृतक युवक के आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के पीटी में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल पटना में आयोजित की जाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और MLC मौजूद रहेंगे।
2: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित, सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब उत्साहित है। बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 3 मंत्रियों को अधिकृत किया है। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नीतीश मिश्रा के नाम शामिल हैं। श्री चौधरी ने गृह विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए विजय कुमार चौधरी को, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और सिविल विमानन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दी है। वहीं निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े सवाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा देंगे।

0: विशेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हुगली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं बंगाल में योग दिवस का हिस्सा बनेंगे।
3: कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा।
0: इधर प्रदेश भर में कई स्थानों पर योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। विभिन्न योग संस्थानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं

0: पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत संसार पोखर के पास खुदाई में मिले काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा को संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष मृणाल रंजन को आज प्रतिमा सौंप दी गई। 2 फीट ऊंची अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल काल से जुड़ी मानी जाती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 157 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले की पुलिस ने FCI थाना क्षेत्र से छिनतई मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपनी मां की हत्या के मामले में दोषी पुत्र लाल बाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 22,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र में इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया था। सीवान के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील कुमार श्रीवास्तव ब्लड डोनर क्लब के संरक्षक बने हैं। श्री श्रीवास्तव को दधीची देहदान समिति की जिला इकाई का भी संरक्षक मनोनीत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसान समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट UG पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। NTA के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं BPSC संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: Akashwani at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: जिले में कल 12 परीक्षा केंद्रों पर नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के प्रवेश का अंतिम समय अपराह्न 1:30 बजे तक निर्धारित है। NTA के निर्देश पर आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नीट पुनर्परीक्षा 2026 से संबंधित केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के

0: आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुभवी पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी सह परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी के द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी। वहीं सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व जैमर का इंतजाम भी किया गया है। जिला साइबर सेल भी सोशल मीडिया पर लगातार कड़ी नजर रख रही है। केंद्रीय पंचायती राज मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जिले के सहारा वृद्धाश्रम का विशेष निरीक्षण किया और संवाददाता कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने आवासीय कक्ष, भोजनालय, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र एवं मनोरंजन कक्ष समेत वृद्धा आश्रम के विभिन्न भागों का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सभी वृद्धजनों को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट किया और उन्हें फल एवं अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट प्रदान किए। श्री सिंह ने कहा कि वृद्धजन समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनकी सेवा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री लेसी सिंह, कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। आपदा प्रबंधन मंत्री सह पूर्णिया जिला के प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संभावित बाढ़ सुखाड़ की पूर्व तैयारी, जल जीवन हरियाली और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और सभी सातों विधानसभा क्षेत्र के विधायक उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने आपदा में मृत लोगों के परिजनों को चेक प्रदान किया। उन्होंने दिव्यांग लोगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। श्री सदा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को जिले में सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण पूर्णिया की ओर से एक दिवसीय जिला स्तरीय शारदीय महाअभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि हितकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करना है और खरीफ मौसम में नवीन कृषि तकनीकों एवं नवाचारों को बढ़ावा देना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने किसानों से कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी खेती बचाओ अभियान से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान सॉयल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर अधिक लाभ ले सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंडों में 10 जून से 22 जून तक प्रखंड स्तरीय शारदीय महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 11 जून से 30 जून तक कृषि जन कल्याण चौपाल सह खेत बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 9 जून को जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जाँच किया गया। लाभार्थियों को चिकित्सकीय सहायता भी दी गई। इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि 2016 में शुरू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध प्रसवपूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। पूर्णिया जिले में लगातार आंधी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश और तेज आंधी से कई स्थानों पर बड़े पेड़, घर और बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। आप सुन रहे हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों को। दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी नगमे। सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म आक्रोश का ये गीत, जिसे गाया है अनुपम आमोद ने। गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं और इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी,

0: बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है।
0: कल्याण के
2: अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है, अमित त्रिवेदी का संगीत, अरिजीत सिंह ने इस गीत को गाया है और फिल्म है केदारनाथ।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबो के बीच आ गया। अति उत्साहित हूँ, हाँ, क्योंकि पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम बजा था उसमें ढेर सारे फोन कॉल इस बार आए हैं। उसको सुनने के बाद क्या बक्सर, क्या भागलपुर, क्या बेतिया और क्या कटिहार, क्या आरा, पटना, छपरा, सिवान, हर जगह से हाँ फोन कॉल आए और उन्होंने कहा कि इंतजार था आपके इस कार्यक्रम का। जब आपका कार्यक्रम सुनते थे तो उस वक्त हमने इंटरमीडिएट नहीं किया था और आज आपने

आकर हमें फिर से मार्गदर्शन किया। एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे बिहार वालों कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर टेक्निकल पढ़ाई किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने कर लिया, हाँ जिसमें कि BCA और BBA कंप्यूटर से और मैनेजमेंट से BCA और BBA की पढ़ाई जो आपने कर ली, तो रास्ता सहल हो जाता है। और अच्छा संस्थान इसलिए कहा कि वैसा संस्थान जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर अच्छे हो, जॉब प्लेसमेंट अच्छा हो, किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। तो आपको जैसा कि हम हमेशा बताते रहे कि आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना में जो संस्थान है जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है और 27 वर्षों से ध्यान से सुनिए, आप युवाओं के साथ इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। सगुना मोड़ हो या राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना विहंगम कंप्यूटर लैब और बहुत ही उत्तम शिक्षा

0: यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है और 27 वर्षों से ध्यान से सुनिए, आप युवाओं के साथ इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। सगुना मोड़ हो या राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना विहंगम कंप्यूटर लैब और बहुत ही उत्तम शिक्षक की व्यवस्था है। और जो डायरेक्टर हैं, हाँ, आशीष आदर्श जी, हमेशा उनसे आप मिल सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, अगर बीसी और बीबीए करना होना तो कम से कम आर्केड बिजनेस कॉलेज में एक बार फोन जरूर कर लीजिएगा। नंबर है 7520800800। अगर ऐसे कहें 7520800800, वाह वाह क्या बात है, 7520800800, ये याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बताते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये एकमात्र संस्थान है जिसे बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता दी गई है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: और अब बुलाते हैं आशीष आदर्श जी से और थोड़ा बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। पीसीएम जो करते हैं ना, खास करके लड़के, उनकी पहली इच्छा होती है कि हम इंजीनियरिंग करें, लेकिन आज सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आप हमें बताइए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए हुए युवा साथियों के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है इंजीनियरिंग के अलावा, क्योंकि पीसीएम से पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, युवा जो है ना, वो सोचते हैं कि 4 साल में हम इंजीनियरिंग कर लेंगे और उसके बाद हमको नौकरी मिल जाएगी। उनके माता पिता भी यही सोचते हैं और आगे क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और उनको भी पता चलता है। तो क्या इंजीनियरिंग के अलावा भी पीसीएम के युवा साथियों के लिए बीसीए बीबीए या इस तरीके के कोई और कोर्सेज हैं, या आपका एक्सपीरियंस यानी 27 वर्षों का अनुभव क्या कहता है?
3: देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं यहां पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूं जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कहीं या किसी ने बिजनेस कर लिया, और बाकी 7 लाख लोग निकल गया। बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ रहे, घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी आपका जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के, इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीए, वो एमसीए आप कीजिए बीसीए करने के बाद में, या बीसीए करने के बाद भी इवन बहुत सारी आईटी कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीसीए एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़, आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: क्या बात है आशीष जी, आपसे बात करना हमेशा एक नया अनुभव होता है। डाटा जो है ना, आंकड़े आपके जुबान पर

0: कहते हैं 27 वर्षों का आपका अनुभव और 27 वर्षों का आर्केड बिजनेस कॉलेज का अनुभव निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोलता है। यदि आप पीसीएम किए हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपने किया है इंटरमीडिएट, तो बीसी और बीबीए कीजिए और एक बार जरूर नॉक कीजिएगा हाँ आर्केड बिजनेस कॉलेज को, क्योंकि 27 वर्षों का अनुभव है। आशीष जी खुद एक करियर काउंसलर हैं, हम नंबर बता रहे हैं वही एकदम रिदम में 7520800800 हाँ 7520800800 यानी 7520800800 और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज वाले, समाज में युवाओं को अवेयर करना चाहते हैं। चलिए वापस चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आपने पीसीएम वालों को तो बता दिया, आर्ट्स वाले जो युवा साथी हैं हमारे जिन्होंने कला क्षेत्र से इंटरमीडिएट किया है, उनके लिए भी अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: देखिए आर्ट्स से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय बीसीए के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगती है 10+2 में, लेकिन कईयों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझना यही है कि यदि आपने आर्ट्स से अगर 10+2 किया है तो फिर बीबीए कोर्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसी स्थिति में बीबीए कीजिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से एमबीए कर लिया तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूंगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको बीबीए में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप बीबीए करते हैं, उसके बाद एमबीए करते हैं, तो आपको फिर पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों, आपके लिए भी आशीष जी ने दो बातें कही है, उस पर सोच विचार करना अब आपकी जिम्मेदारी है। हम तो कहेंगे बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है और इसको हमने देखा है, हमने देखा है, एक लंबा अनुभव है हमारे पास भी, कि जो युवा बीसीए और बीबीए किए किसी अच्छे संस्थान से लाइक आर्केड बिजनेस कॉलेज और इस तरीके से, तो उनका करियर बहुत आगे गया है, उड़ान चल रहा है। उड़ान कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, करियर गाइडलाइन है ये, है ना, और खास करके टेक्निकल पढ़ाई पर एम्फेसाइज करता हूँ जिससे कि कल को बेरोजगारी नहीं हो, आपको रोजगार मिल जाए। एंड ऑफ द डे, अंत में तो एक ही मोटो होता है, अच्छा पैसा कमाना, और अच्छा पैसा तभी मिलेगा जब अच्छा हाँ रोजगार या नौकरी होगी, और अच्छी नौकरी तभी होगी जब किसी अच्छे संस्थान से आपने टेक्निकल पढ़ाई की होगी जिसमें बीसीए और बीबीए बहुत ही अव्वल है। हम एक बार आर्केड बिजनेस कॉलेज का नंबर बता रहे हैं, वही 7520800800 7520800800। पूरे बिहार में हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, आकाशवाणी के 6 केंद्र से इसका प्रसारण हो रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी युवा छूट जाए और कल को कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तब हम कैसे अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। इसीलिए आप भी फोन कीजिए दिए गए नंबर पर, एडमिशन लेना हो ना लेना हो, जानकारियां लेना ही चाहिए। जी हाँ, और अब आशीष जी एक बात बताइए, अगर बीसीए और बीबीए में से किसी एक कोर्स को चुनना होगा तो युवा किसको चुने?
1: देखिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप बीसीए ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को के लिए भी यही थ्योरी में कहूंगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूंगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी। बीबीए

0: कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीजें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है आशीष जी आपसे, आपका अनुभव है आप बता पाएंगे कि जो बच्चे बीसीए और बीबीए करके आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रोजगार मिल जाएगा, कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो?
0: देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज में आइए अगर आप ऐसा समझते हो, बेहतर समझते हो तो, और फिर आप केवल अपना समय दीजिए हमें, आपको प्रॉपर आप क्लासेस करिए, आप प्रॉपर जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, जो भी अभी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, उन सबों को अटेंड कीजिए। आपको हम आर्केड बिजनेस कॉलेज में वो चीज़ देते हैं जो नॉर्थ इंडिया में कोई दूसरा नहीं देता। कारण क्या है कि जितने बड़े बड़े जो वर्कशॉप्स होते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि अवध ओझा आते हैं, सोनू शर्मा आते हैं, चेतन भगत आते हैं, सारे के सारे, इन सबों के वर्कशॉप को अगर आप दिल्ली जाकर के अगर अटेंड करेंगे तो एक एक वर्कशॉप का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये उसका शुल्क है, जो सब कुछ हम यहाँ पे फ्री आपको देते हैं। मनोज वाजपेयी ये भी बीच में आए थे, उनका सेशन हुआ, फिर अभी बहुत सारे जितने भी सेशंस आप गौर गोपाल दास आए, मतलब जो भी इंडिया के जो टॉप जो इंस्टीट्यूशन जो मोटिवेटर्स हैं वो सारे हमारे यहाँ आते हैं बच्चों को कुछ सीख देने के लिए। डॉक्टर किरण बेदी कई बार आ चुकी हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ज़रूर आइए और आकर के यहाँ पे जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं सबको आप अटेंड कीजिए और आप खुद देखिए कि आप किस प्रकार बन करके 3 साल के बाद यहाँ से निकलते हैं।
1: आशीष जी, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं बताइए, माता पिता का क्या रोल होना चाहिए?
0: देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स से बेहतर करियर काउंसलर्स और कोई नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो अपने बच्चों की सारी लिमिटेशंस को जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने बच्चे को वही ऑप्शन सेलेक्ट करने की छूट देनी चाहिए जो करना चाहता है। देखिए, हमेशा मान के चलिए कि एक थर्ड क्लास इंजीनियर से एक फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ज़्यादा बेहतर है, तो जो उसका फील्ड में जिसमें वो जाना चाहता है उसमें ज़रूर जाए और उसके लिए पूरा जो पेरेंट्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए।
1: आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बने रहिए, अगले एपिसोड में आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आशीष जी चले गए, आपको बताएं वैसे युवा साथियों, अगर आपके मन में झिझक है कि मैं गांव का रहने वाला हूं कैसे क्या कर पाऊंगा, तो आपके लिए बताएं आर्किड बिजनेस कॉलेज में अलग से क्लासेज यहां लिए जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, क्रेडिट कार्ड से यानी पैसे की समस्या है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो संस्थान है ना आर्किड बिजनेस कॉलेज, जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं उड़ान, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520-800-800, याद रखें 7520-800-800।
1: तो बस आज के लिए, चलने से पहले नंबर है 7520-800-800, 7520-800-800 जरूर डायल करें बीसीए और बीबीए के लिए आर्किड बिजनेस कॉलेज को। नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
5: उड़ान, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और अब विज्ञान कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं नमस्कार। आज का हमारा विज्ञान कार्यक्रम के इस नए अंक के साथ मैं हूं कायम नैयर। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे स्वस्थ रहने का सबसे आसान व सुरक्षित तरीका और हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व पर। साथ ही आपको सुनवाएंगे मनोज कुमार की वार्ता जिसका विषय होगा योग करें निरोग रहें, और आपको योग के बारे में कुछ रोचक तत्वों से भी परिचय करवाएंगे। श्रोताओं कहा जाता है कि योग करें निरोग रहें, यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो योग के महत्व को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि योग करने से आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। योग शरीर मन को स्वस्थ रखने का एक प्राचीन अभ्यास है। नियमित रूप से योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है और रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग न सिर्फ हमारे आरोग्य लाभ का एक सशक्त माध्यम है बल्कि जीवन जीने की कला भी है। योग के बहुत सारे

अब हैं जिस पे अगर हम बातें कर लें तो बहुत कम है। जैसे बात करें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। श्रोताओं, आज योग शब्द सुनते ही हमें लगता है कि हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। योग हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। योग का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस प्रदान करना है। ये हमारे शरीर को तरोताज़ा करता है, हमें शांत रखता है। आज इसका चलन इतना हो गया है कि आप योग को छोटे जगहों पर, पार्क में, घरों में, स्कूलों में आसानी से कर सकते हैं। और स्कूलों में बच्चों को इसके अब क्लासेस दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिए जाते हैं। बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा योग के बारे में क्लासेस दिए जाते हैं, जिसके बारे में उनको अच्छे ढंग से बताया जाता है। और श्रोताओं, बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का कारण यह है कि क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति है, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। मानव कल्याण के बीच एक प्रतीकायत सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है और कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है। देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया था। इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान रखा गया था। इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी गई और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। योग के जनक की बात करें तो महर्षि पतंजलि को माना जाता है। उन्हें योग सूत्र के लेखक के रूप में माना जाता है, जो योग सिद्धांतों और अभ्यास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग मूलतः एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जो एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक विज्ञान और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलाना या एकजुट होना। श्रोताओं, योग के कई प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। हठ योग, यह योग एक प्राचीन रूप है जो शरीर और मन को शुद्ध करने पर केंद्रित है। इसमें आसन, शारीरिक मुद्राएं, हठ योग, यह योग एक प्राचीन रूप है जो शरीर और मन को शुद्ध करने पर केंद्रित करते हैं। इसमें आसन और ध्यान शामिल है। राजयोग, इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। यह पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित है। इसमें 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कर्मयोग, यह योग का मार्ग है जो बिना किसी फल की इच्छा के कर्मयोग करने पर जोर देता है। भक्ति योग, यह योग का मार्ग है जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर केंद्रित है। ज्ञान योग, योग का मार्ग है जो ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित है। क्रिया योग, यह योग एक गतिशील रूप है जो ऊर्जा के स्तर पर काम करता है और कुंडली जागरण के लिए आसन, बंध, मुद्रा और प्राणायाम पर जोर देता है। श्रोताओं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, कोई भी क्रिया करें, उन चीज़ों के लिए उसके नियम, समय, उसकी पूरी जानकारी तथा अनुशासन का होना काफ़ी ज़रूरी है। उसकी पूरी जानकारी लेना काफ़ी आवश्यक है, तभी हम उन चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए वह व्यर्थ हो जाएगा। श्रोताओं, योग करने का भी कुछ महत्वपूर्ण नियम है एवं समय है, जिसे हमें अनुशासन के साथ करने से ही फायदा है। खाली पेट योग करना, शांत वातावरण में योग करना, आरामदायक कपड़े पहनना और योग करने से पहले शरीर को वार्म अप करना। योग करने के लिए प्रशिक्षक यानि अनुभवी, जो इसके बारे में जानते हैं, जो इसके गुरु हैं, उनके निगरानी में योग करना आवश्यक है। बात करें खाली पेट में योग करना, योग करने से कम 2 से 3 घंटे कुछ भी ना खाएं और योग करने के बाद 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। योग करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां कोई शोरगुल ना हो और आप शांति से अभ्यास कर सकें। आरामदायक कपड़े पहनें और आपको सहज महसूस कराएं। वार्म अप करें। योग शुरू करने से पहले अपने शरीर को वार्म अप करना ज़रूरी है, जैसे कि थोड़ा देर टहल लेना, उसके बाद ही योग करें। शुरुआत में हल्के आसन, योग की शुरुआत हल्के और सरल आसन करें और धीरे धीरे कठिन आसनों की ओर बढ़ें। सांस पर ध्यान, योग करते समय अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। शरीर की सुनें, यदि आपको कोई आसन करते समय दर्द या परेशानी हो रही है तो उसे तुरंत रोक दें और अपने शरीर की सुनें। योग के लाभों को महसूस

करें और नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। और योग हर एक उम्र में ज़रूरी है, हम कर सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या किसी भी और भी प्रकार से आप किसी और भी रोग से आप ग्रसित हैं, तो अगर आपको परेशानी हो रही है, आपके शरीर में कहीं दर्द है, कुछ भी ऐसा है, तो आप तुरंत उसके जो प्रशिक्षक हैं उसे मिलें, डॉक्टरों की सलाह लें, उसके बाद ही करें। श्रोताओं, यूँ तो योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में हम जितनी बातें करें उतना कम है। योग को बिल्कुल लाभ के लिए करें और सुकून महसूस करें, शांत जगह पर बिल्कुल हम उसको कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा। इसके लिए आपको जो तरीका है, जो स्टेप है, जो स्टेप के हिसाब से नियम और अनुशासन के हिसाब से करने की ज़रूरत है। योग सभी उम्र के लोग, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, सभी के लिए अनिवार्य है। योग करने की एक आदत डालनी चाहिए हमारे ऊपर में, कि एक टाइम हम बना लें कि हमको इस वक्त में योग करना है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना है, तो बिल्कुल हमारे जीवन में सब कुछ आसान होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है योग करने से पहले। योग करने से पहले आप स्नान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो बिना स्नान किए भी योग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार एक उत्कृष्ट वार्म अप व्यायाम है जो शरीर को लचीला बनाने में, ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। प्राणायाम जो श्वसन नियंत्रण की तकनीक है, योग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मन को शांत करे और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करे। योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। योग शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन में सुधार करता है। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। योग तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को सुधारता है। योग आपको अपने शरीर और मन के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है और आंतरिक शांति की भावना भी प्रदान करता है। योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप योग को एक योग शिक्षक के मार्गदर्शन से लें, उनसे सलाह मशवरा लेकर ही आप योग करें। योग के लाभों को प्राप्त करने के लिए आप इसे नियमित रूप से करें। सम्मान करना, योग करते समय अपनी शारीरिक सीमाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी आसन में असहज महसूस करते हैं तो इसे करना बंद कर दें। करें योग, रहे निरोग या एक शक्तिशाली मंत्र है जो हमें याद दिलाता है कि योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योग को अपने जीवन में शामिल करके आप एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की अगर बातें करें, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यह थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के वैश्विक विचार को बढ़ावा देती है, जिसका अर्थ है कि स्वास्थ्य और टिकाऊ भविष्य के लिए हमारे ग्रह और हम सभी की सेहत आपस में जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आप योग नहीं कर सकते हैं, उसमें खुद को बचाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जब वे बीमार हो, थके हुए हों या जल्दबाजी में हो। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान योग करने से बचना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद योग नहीं करना चाहिए। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ लोगों को योग करने से बचना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे बीमारी के हालात में बुखार होना या जब शरीर थका हुआ या कमजोरी महसूस हो रहा हो तो आपको योग नहीं करना चाहिए। कुछ स्वास्थ्य समस्या हो, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या पेट की सर्जरी हो, योग करने से पहले डॉक्टरों से परामर्श कर लेना चाहिए। योग को शांति और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। यदि आप जल्दबाजी में हो तो योग से बचें। यह हमेशा बेहतर होगा कि योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग प्रशिक्षण से परामर्श लिया जाए, खासतौर पर यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। श्रोताओं, क्या आपको पता है योग का अभ्यास करने से रक्तचाप 3.8 mmHg तक कम हो सकता है। योग 89% रोगियों में पुराने दर्द से राहत देता है। योग करने वाले लोग 3 महीने में औसतन 3.5 kg वजन कम कर सकते हैं। लगभग 54% लोगों ने तनाव दूर करने के लिए योग शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाएं, योग से जीवन सफल बनाएं। हम सबका यही नारा है, योग दिवस को सफल बनाना है। श्रोताओं, हम जीवन में कुछ भी करते हैं या जीवन को हम जिस तरह चलाते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हमारा शरीर अच्छा हो, हम स्वस्थ रहें, तो ही हम किसी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं अपने परिवार के लिए।

0: करते हैं, खुद के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही बीमार रहेंगे तो जाहिर है उन कामों को हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमारा मन किसी काम में नहीं लगा रहेगा, हम किसी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिस रफ्तार में करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ हों, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा तभी होगा जब हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है अपने आप का पूरा ख्याल रखें, सुबह जल्दी उठना, स्वस्थ भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव का प्रबंधन करना। श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा हो पाएगा जब हम सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने आप को तरोताज़ा और जवान महसूस करते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना, व्यायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियों से बचता है। स्वस्थ आहार लेना, स्वस्थ आहार लेने से आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और यह आपको बीमारियों से बचाता है। पर्याप्त पानी पीना, पर्याप्त पानी पीने से आपके शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते हैं और यह आपकी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त नींद लेने से आपके शरीर और दिमाग को आराम मिलता है और यह आपको बीमारियों से बचाता है। तनाव का प्रबंधन करने से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और यह आपको बीमारियों से बचाता है। नियमित रूप से हाथ धोते रहने से आप कई प्रकार के बीमारियों से बचते हैं। तो एक आदत डालनी चाहिए कि हमें नियमित रूप से हाथ धोना है। धूम्रपान और शराब के सेवन से हमें बचना है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कई बीमारियों को घर लाती है, जिसे हम धीरे धीरे महसूस करते हैं या महसूस करते भी हैं तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। आगे चलकर ये खतरा हो सकता है। नियमित रूप से डॉक्टरों की जाँच करवाना और अपने बीमारियों का जल्दी से जल्दी पता लगाना और इसका इलाज, सही उपचार करवाना। तो श्रोताओं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। खान पान का भी हमें विशेष तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो टिप्स है, जो छोटी छोटी आदतें हैं, ये हमारे जीवन में होना बिल्कुल ज़रूरी है। श्रोताओं, इन सब के साथ साथ जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपको खान पान का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हरी सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं, बादाम खाएँ, सेब का सेवन करें, पपीते खाएँ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम हर वो काम को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं, समय के साथ करना चाहते हैं, कम समय में अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को भूल जाते हैं, जो हमारा शरीर है। इसकी देखरेख हम बस ऐसे ही करते हैं, नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, और आगे चलकर ये नज़रअंदाज करना हमें काफ़ी भारी महंगा पड़ जाता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन में रोज़ बदलाव कर सकते हैं। अपने आप का ध्यान रखना ये ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, जो आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है, और इसका असर एक दिन में नहीं दिखता है। धीरे धीरे इसका असर आपको देखने लगेगा कि आप धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे। आप सुबह उठकर सबसे पहले पानी पिए, और अगर हो सके तो संतरे का जूस, खीरे का जूस, मौसम्मी का जूस लें। गर्मी के दिनों में आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, जिससे आपका जो पाचन शक्ति है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। आप अपने आप को काफ़ी आरामदायक फील करेंगे, सारा दिन आपका अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स है, जो छोटी छोटी आदतें हैं, वो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें करें, तो ही हम जीवन में खुश और खुशहाल रह सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मनोज कुमार की वार्ता। वार्ता का विषय है योग करें निरोग रहें।
1: योग करें निरोग रहें, यह कहावत योग के महत्व को दर्शाता है, जो जीवन में मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ एवं मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। योग ही एकमात्र समाधान है, क्योंकि जो भी कार्य एकाग्रता, पवित्रता, कुशलता, नियम पूर्वक किया जाता है, विधि निवेश का ध्यान रखकर किया जाता है, वही योग है। योग में इस सृष्टि की सारी दिव्यताएं समाहित है। एक एक श्वास से लेकर जीवन का हर कर्म पहलू, जो दिव्यता के साथ

सारी दिव्यताएं समाहित है। एक एक श्वास से लेकर जीवन का हर कर्म पहलू जो दिव्यता के साथ निष्पन्न हो रहा है, वह सब योग की ही कला है। योग एक जीवन चिकित्सा और साधना पद्धति है। योग जीवन का श्रेष्ठ साधन है। आत्म उपचार से लेकर आत्म साक्षात्कार का एक व्यवहारिक मार्ग है। सभी रोगों, तनावों, सब प्रकार की बीमारियों व बुराइयों से मुक्ति और अशुभ की समाप्ति तथा शुभ की प्राप्ति का उपाय है योग। योग आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान का एक समुचित मार्ग है। इसके अलावा दुनिया में कोई और पथ है ही नहीं जो सुखी होने का सब प्रकार के मार्ग प्रशस्त कर सके। योग दिव्य जन्म देता है। एक जन्म माँ की कोख से होता है, उसे भौतिक जन्म कहते हैं, और दूसरा जन्म योग से होता है, उसे दिव्य जन्म कहते हैं। योग का मूल दर्शन है सभी व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। समाधि अर्थात समाधान, जीवन में संपूर्णता, समग्रता, दिव्यता एवं पूर्णता। प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए। प्राणों का आधान करके प्रभु की संपूर्ण दिव्यताओं का अपने भीतर आहत करना भाव अनंत ज्ञान, प्रेम, करुणा, सुख, शांति, उत्साह, निर्भयता से युक्त होकर उस प्रभु का आधान करना है। यह प्राणायाम का आध्यात्मिक पहलू है। योग मात्र एक क्रियाकलाप नहीं है। योग इस जीवन का संपूर्ण विज्ञान, सत्य पर आधारित समाधान है। योग प्रार्थनामय, ज्ञानमय, करुणामय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, भक्तिमय, कर्ममय और पुरुषार्थमय, परामर्थमय है। योग शरीर, मन, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। योगाभ्यास करने से हमारा शरीर बलवान, मस्तिष्क प्रज्ञावान, हृदय श्रद्धावान बनता है। हम संस्कारवान और पवित्रवान बनते हैं। जीवन में ऐश्वर्यवान बनते हैं और हम महान बनेंगे तो हमारा भारत भी महान होगा। यह है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की क्रिया, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की क्रिया। युग निर्माण की यात्रा से योग की यात्रा समाप्त होती है। योग का अर्थ है परमात्मा के दिव्य ज्ञान से, भाव से, शक्ति से जुड़ जाना। हम में जो भी ज्ञान, भाव, क्रिया, शक्ति है, उसका मूल आधार परमात्मा है। भगवान के दिव्य ज्ञान से, प्रेम से, संवेदनाओं से, भगवान की दिव्य शक्ति सामर्थ्य से जुड़ना ही योग है। योगाभ्यास करते हुए हम हमेशा भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। इसी को जीवन की मुक्ति कहा जाता है, अर्थात समस्त कार्यों का निष्पादन करते हुए हम ब्रह्म के साथ एकात्म हो रहे हैं, ऐसी भावना जागृत होती है। योग यात्रा है आत्म उपचार से आत्म साक्षात्कार की। एक शब्द में कहें तो योग में मनुष्य की सब समस्याओं का समाधान है। इसलिए हम सबको योगी बनना है, योगी बनके आगे का मार्ग प्रशस्त करना है। सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ी विजय और उपलब्धि योग की, और सबसे बड़ा सुख काम धर्म योग का है। सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति योगमयी जीवन पद्धति है। सबसे बड़ा अभियान, आंदोलन, अनुष्ठान, यज्ञ, सबके जीवन की सबसे बड़ी मांग, मूल आवश्यकता यदि कोई है तो वह योग है। योग में जो सर्वाधिक रूपांतरण होता है वह प्राणायाम और ध्यान में होता है। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है, और ओंकार का जप में जब दोनों एक साथ होते हैं तो हमारा शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, हमारी आत्मा और अस्तित्व का दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन ही योग है, यज्ञ है। जीवन एक संघर्ष है, साधना है, जीवन की एक युद्ध भी कह सकते हैं। योगी ही योग करके जीवन को युद्ध से हमें बचाता है और जीना सिखाता है। योग सबके लिए है। योग करने से आपके अंदर दिव्यता आएगी, कुशलताएं बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी,
आप

0: स्किलफुल, प्रोडक्टिव और इनोवेटिव होंगे। जीवन के हर संदर्भ में, दृष्टि में, कृति में समग्रता, संतुलन, न्याय यह योग का एकमात्र दर्शन है। मति, भक्ति, कृति, प्रकृति और संस्कृति में सम्यता का दर्शन ही योग का दर्शन है। योग दिव्यता का बीज बोता है, इसलिए इसको बीज मंत्र भी कहते हैं। संसार में सब प्रकार का वैभव ऐश्वर्य है, लेकिन यदि अपना मन सुखी नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते। और मन का सबसे बड़ा दुख है हम अपने भीतर एक अपूर्णता, अधूरापन अनुभव महसूस करते हैं। इसलिए योग कहते हैं कि मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, सृष्टि भी अपनी पूर्णता दिव्यता में प्रतिष्ठित है। यह है योग का सिद्धांत। योग का मूल दर्शन है सभी व्याधियों की समाप्ति, समाप्ति की प्राप्ति, समाधि मतलब समाधान, जीवन में संपूर्णता, समग्रता, दिव्यता, पूर्णता, यह योग का एक साधन है। योग का अर्थ है भगवान के साथ एकाकार हो जाना। श्रम और विश्राम, पुरुषार्थ और प्रार्थना, ये जीवन के दो बड़े आधार हैं। ध्यान एक क्षण में ही घटित हो जाता है, उसे समझ पाना जरा कठिन होता है, लेकिन योग एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हर रोग के लिए अलग दवा, अलग डॉक्टर का भयंकर चक्रव्यूह है, योग ही इसकी एकमात्र औषधि है। सुबह उठ करके जिस दिन यह संसार योगाभ्यास और अष्टांग योग के अनुकूल योग युक्त आचरण करके लग जाएगा, उस दिन यह योगमय विश्व सुखमय, शांतिमय, पूर्ण समृद्धि कारक बन जाएगा। योग के द्वारा हमारे भीतर दिव्य रूपांतरण घटित होता रहता है। कितनी भी बीमारियों ने क्यों न हमें घेर लिया हो, मौत के मुख से भी योग आपको बाहर निकाल कर ला सकता है। योग से नया जीवन मिलेगा। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है और ओंकार सबसे बड़ा जप है। यह दोनों जब साथ साथ होते हैं तो हमारा शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, हमारी आत्मा, अस्तित्व दिव्य हो जाता है। इस पिंड और ब्रह्मांड में अच्छी बातें बहुत है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ तत्व है योग। योग करने से सब निरोगी हो जाते हैं। हमारे भीतर अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें हैं। योग अच्छाई को शिखर तक पहुंचा देता है और बुराई को निर्जीव कर देता है। यह है योग का चमत्कार। योग कोई विशिष्ट विषय नहीं है, पूरा जीवन ही योग है। जो भी पवित्रता, एकाग्रता और मर्यादा में किया जाता है वह सब योग है। योग यात्रा है आत्म उपचार से, आत्म साक्षात्कार की। एक शब्द में कहें तो योग में मनुष्य की सब समस्याओं का समाधान है। इसलिए हम सबको योगी बनना है। हमारा शरीर वज्र की भांति होना चाहिए। जो बलहीन होता है उसका अस्तित्व मिट जाता है, इसलिए बल की उपासना करो। सबसे बड़ा बल है योग बल, और योग बल से बढ़ता है आत्मबल, बुद्धि बल, हृदय बल, संवेदनाओं का बल, सामर्थ्य का बल कहलाता है। यदि जिस दिन सुबह सुबह लोग नियमित रूप से योग करने लगेंगे, उस दिन से हमारे संपूर्ण राष्ट्र में बीमारियों का जो चक्रव्यूह है वह प्रायः समाप्त हो जाएगा। जो योग करेगा वह कभी भी मानवीय मूल्यों से हट नहीं सकता। मानवता बढ़ेगी, देश की समृद्धि होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था योग करें, निरोग रहें। वार्ताकार थे मनोज कुमार। इसी के साथ हमारा विज्ञान कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ मुझे यानी कयाम नैयर को दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे अगले अंक के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत।

की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: और अब हम आपको समाचार संध्या के लिए अपने दिल्ली स्टूडियो लिए चलते हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र

0: सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए

0: पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: We have been able to achieve that in the first.
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: They are all designed in India now.
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: .in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
1: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi

0: आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: योग का बैन अल-अक़वामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अल-अक़वामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अल-अक़वामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग की खसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राबतों की भारतीय कौंसल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2,500 मकामात पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकामात पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, CP सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर

0: किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपए के बड़े अखराज के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज किया, जिसका मकसद सनत की क्यादत में तहकीक, टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए तरबियती मराकज और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तश्कील पर जोर देना है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निजाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
2: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी उसारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, सीसीटीवी, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। एनटीए ने कहा है कि वो बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मुशाहिदीन, राबता करो, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवेकार लाया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ जीपीएस वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। एनटीए भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ईरान की

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बना

कर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई, जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई

0: ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई, बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को।
1: तोर जय जय कर तार, तोर जय जय।
0: कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था ये।

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर
0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोडूं रे जो।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में

जब मैं आर्ट स्कूल में थी मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाए या ना सुन पाए, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गा

गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई चोट ना छत की उभर आई।
1: फिल्म सूरज।
2: इतना

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं वारी

0: जाऊं रे तुम पे। दुतृष्णा तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक कर्महे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को

प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।